0: Mica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka labh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: प्यार कोई पाप नहीं, प्यार है मिला प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन

0: भव सागर से वो तर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरु जी, ठीक है।

0: चोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के तुम।
1: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries, I'm having fun on PlayOjo.
5: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks, playtime's over. Lovely.
6: Feel the fun, PlayOjo.
7: 18 plus, gamble aware.
8: Backed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: बाह बाह बाह, तुहार जवाब नाही,

0: Breaker Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
2: नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे।

सुनिए हाथ वैसगा नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कहीं ना जाए जे को कहे पिछ

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म से ती सन बंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

बंद खलासी भाने होए हो राख ना सके कोए जे को खाए को आखन पाए वो जाने जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे।

0: £99 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
2: Uncle, tame pehla thi aavaj chho.
3: Aava etle keva.
1: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
3: मारो बाप बनवा की कोशिश करे तू बुद्धि बेची आवे छे तू अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे
1: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
3: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर
4: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
5: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: 4 a 24 hour line
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
0: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Breakfast with Deep Raja.
3: I think it's time to get a little bit romantic, don't you?
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: आज कुछ ऐसा ही मौसम है और एक बार फिर से मौसम अच्छे मौसम की तरफ, अच्छे टेम्परेचर की ओर जा रहा है। ये गीत हमने आपको आराधना फिल्म से सुनवाया, जिसमें म्यूजिक था SD बर्मन का, और उससे पहले सरगम फिल्म का गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के म्यूजिक से सजा हुआ, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ों में। तो लीजिए, दो रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत है इस शो में। सैटरडे का दिन है, लीजिए एक बार फिर से द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है, आपसे हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस पहुँचे हैं जिन पर ज़रूर नज़र डाली जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी क्लासिक्स बजते हैं, सुनवाती रहूंगी, आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.2 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाई SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा आपको बता दें कि जून से पहले पहले अगर आप ऐप या फिर ब्रांच या फिर ऑनलाइन भारत पैसा भिजवाते हैं तो आपको मौका मिल सकता है 75 pounds का वाउचर जीतने का हर दिन, जब आप 1000 pounds से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करते हैं, या फिर 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
3: Like a radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो लीजिए, फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है, और आज जिन टीम्स के बीच में मैच होने वाला है वो है ग्रुप बी की टीम कतर और स्विट्जरलैंड, और ग्रुप सी की टीम ब्राज़ील और मोरक्को। इन दोनों के बीच में मैच होगा, तो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। लेकिन उसके अलावा हम आपको याद दिलाएंगे कि आप भूलिएगा मत, बिल्कुल आप रैक लो जो कि हमारे शो इस अपडेट्स के स्पॉन्सर हैं, उनसे 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Sat

0: भाई वीकेंड पर अगर आपका भी प्लान है अपनी सजनिया या अपनी दुल्हनिया को ले जाने का तो हमारी ओर से आपको ढेरों ढेरों बधाइयां। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में था ये गाना, जब प्यार किसी से होता है, सलमान खान और ट्विंकल खन्ना की फिल्म। और इसी गीत को आप सबने पसंद किया है, 90s का गीत था और गीतों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपके ढेरों मैसेजेस मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए अगला एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाने से पहले एक नजर आप सभी के मैसेजेस पर डाल ली जाए। थैंक यू प्रकाश सुथार जी, नॉर्थ होल्ड में आप हमारा साथ दे रहे हैं, अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू प्रज्ञा, कहती है ऋतु आ गई रे, ऋतु आ गई रे, अरे ये तो कविता बना दी आपने मेरे नाम से। थैंक यू प्रज्ञा साथ देने के लिए। थैंक यू तोची पनेसर जी, अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं। थैंक यू विजय गुडूरी जी, आज भी आपने एक बहुत ही सुंदर आज का विचार हमारे साथ शेयर किया है और उसमें लिखा है कि जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना है, जो बीत गया वो सिर्फ अनुभव है, जो मिल रहा है वो उपहार है और जो आने वाला है वो एक उम्मीद है। और बस इसी उम्मीद के सारे हंसी खुशी जीवन जीते रहिए और जब भी समय मिले हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू विजय गुडूरी जी, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। थैंक यू भरत गंगाराम जी, गुड वाली मॉर्निंग हमारी ओर से आपको भी और आपका भी स्वागतम। महेंद्र बाजारिया जी हैरो में है हमारे साथ। हरीश खत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, अर्जुन जी, हरीश रुदा, दिनेश पोपट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव पटेल जी को थोड़ी सी पैरों में प्रॉब्लम है इसलिए फीट अप करके आराम करते हुए यहाँ से बजने वाले गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि रिलैक्स कर रहे हैं। तो बस हमारे साथ गीतों को सुनने का जो रिलैक्सेशन है उससे अच्छा और कहाँ हो सकता है। थैंक यू राजीव जी, सहर जी, राजेंद्र कालरा जी, संतोष जी, अरुणा जी, जासू जी, मिसेस शेख, महेंद्र पटेल जी, मालती जी, उल्लास जी, थैंक यू एंड थैंक यू राजेश जी, कहते हैं आपको बहुत ही खुशहाल शनिवार की सुबह की शुभकामनाएं, जो धूप, नीले आसमान और सफ़ेद फुर्तीले बादलों से भरी है। क्या बात है, क्या एनालिसिस है, थैंक यू। और आप लिखते हैं कि हम शांति और सुख की, शांति और खुशी की तलाश कहीं और करते हैं, जबकि हम इसे पाने के लिए अपने अंदर गहराई से खोज सकते हैं। गहरी बात है। थैंक यू राजेश जी। मिसेस पेकी चियांग आप हमारे साथ हैं और जितने भी साथी घर में, गाड़ी में, काम पर, गार्डन में, जहां भी साथ दे रहे हैं, मेरी ओर से ये गाना आप सबके लिए।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

1986 की फिल्म जांबाज से लिया था ये गाना कल्याण जी, वीर जी शाह और आनंद जी, वीर जी शाह के म्यूजिक पर मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें आपने सुनी। और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। मितुल पटेल कहते हैं कि मैं तो ट्रेन में आपका साथ दे रहा हूँ, तो ट्रेन वालों का भी स्वागत है। और निर्मला जी कहती है हम तो कार में है, तो कार वालों का स्वागत तो मैंने पहले ही कर दिया है साथ देने के लिए, थैंक यू। रोशनी आप हमारे साथ है, हिमांशु पटेल जी थैंक यू, शेखर आनंद जी।

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: आपको याद दिलाते चलें कि लाइका रेडियो नेटवर्क तारीख हलाल के साथ मिलकर एक बार फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट करने जा रहा है, और ये सब हो रहा है क्योंकि उनकी नई ब्रांच खुल रही है रेनर्स लेन में, और ये सब होने जा रहा है वेंसडे 17 जून को। एड्रेस है 297 रेनर्स लेन, पिनर, HA5 5EG। और तारीख हलाल वालों ने कहा है कि पहले जो 100 कस्टमर्स हैं उनको चांस मिल सकता है एक गोल्डन टिकट जीतने का, लेकिन ये सब होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। और अगर आप £1 भी स्पेंड करते हैं तो आपको मिल सकता है £50 वर्थ ऑफ फूड आइटम्स, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहेंगी। याद रखिए, लाइका रेडियो नेटवर्क वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा और हमारी टीम वहाँ पर रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: Ritu Sharma live on Leica Gold Greater London. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और चलिए आपको बताते चलें कि भाई हॉलिडे जाना चाहते हैं, समर चल रहा है, तो ज़रूर साउथॉल ट्रैवल को याद रखिए, उनके साथ टिकट्स बुक कराइए, उन्हें फ़ोन कीजिए 02085748410 पर, या फिर विजिट कीजिए साउथॉल ट्रैवल, क्योंकि न सिर्फ वो टिकट्स बुक कराते हैं बल्कि उनका जो पैकेज है उसमें होती है इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल, एंड ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: It's Righty here, and I'm already loving this glorious summer of football. And while the players know they need to fuel themselves properly for the big games, we need to eat well too. Now, M&S, one of the official partners of our amazing home nations football teams, have created Eat Well. Loads of snacks, meals and drinks that help us all be that little bit healthier. And not only that, it's mega easy to spot, because every pack has a little flower that tells us all we need to know. And because it's M&S, it is, of course, delicious. So, just follow the flower.
3: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour, so no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
8: Was it floor 2 or 3? I swear I parked here. Where is it?
7: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
13: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
14: हमने है इश्क मस्ताना।
12: मैं वापस आऊँगा। A film by Imtiaz Ali.
13: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
12: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina.

0: शानदार म्यूजिक था आरडी बर्मन का, और ऐसे ही बहुत सारे गाने सुनेंगे आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में यादें में, क्योंकि आज की यादें में हम बात करने वाले हैं अपने ज़माने की सुपरस्टार हीरोइन जिनके आप सभी फैंस हैं, और उनका नाम है साधना शिवदासानी। तो आज यादें में होंगी साधना शिवदासानी, उनकी कुछ बातें और उनके ढेर सारे गाने बजेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज्योति जी, आपने मैसेज भेजा है और आपने बताया है कि आज आपके बेटे मिट्जी का हैप्पी वाला 40th बर्थडे है और आप उन्हें ढेर सारा प्यार भिजवा रही हैं। मम ज्योति, डैड सिकी, हिज वाइफ नीनी एंड चिल्ड्रन रे एंड रेमी प्लस एंटायर मेहता एंड पंड्या फैमिली। और आप चाहती थी कि कोई ये गीत लगा दिया जाए, तो बिल्कुल जो अगला गीत है वो आप सभी की ओर से आपके बेटे मिट्जी के नाम पर जाता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेकिन उससे पहले बता दें कि आज 1 पाउंड आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now.

0: Hold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So gold rate is £101.17 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station.
3: This is Like a Gold.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
6: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
7: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
8: This is huge.
7: Thadikalal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
8: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
7: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
8: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
7: Thadikalal, Rainer's Lane. There is only one.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
11: गारंटेड
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
11: फोन 02085748410।
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी, लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो हस्बंड जी।
13: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
14: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
13: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
14: And you didn't pay those massive roaming charges?
13: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
16: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
17: मैं चले बैक टू बैक 3 मूवी
1: मूवीज जोई ली थी।
16: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी क्योर्स विद वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
1: बेहतर कलाकार पाछो आवी जैसे ने पछी बधु ऑलराइट थई जैसे।
16: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल।
17: एवु लागे छे के पिक्चर चाल छे।
18: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग।
19: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस। अ वंस इन अ lifetime spiritual journey.
18: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
20: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
14: 25? Seriously?
20: Sounds like Ojo time.
14: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
20: Sorry about the wait. How can I help?
14: You can help me celebrate. I won.
21: Feel the fun. Play Ojo.
22: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
2: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: हाँ, लता जी और रफी साहब की आवाजों में था ये गाना। साधना जी की एक बहुत ही प्यारी फिल्म असली नकली से लिया था, और उससे पहले आपने राजकुमार फिल्म का गीत सुना। और लीजिए, दो गीतों के साथ आज की यादें शुरुआत हो गई है। और आप में से बहुत सारे साथियों का कहना है कि साधना जी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। तो साधना मुझे भी बहुत पसंद है, हालांकि मैंने उनकी ज़्यादातर फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के गाने बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे ही कुछ गाने आज मैंने चूज़ किए हैं, आप सबको बारी बारी से सुनवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बताऊंगी कि साधना जी के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। और देखिए, हेयर स्टाइल तो ऐसा बनाया कि वो आगे जाकर उसी नाम का हेयर स्टाइल बन गया। 60s और 70s के दशक में उन्होंने खूब काम किया, और इतना काम किया, इतना नाम कमाया कि उस जमाने में उनकी फीस आसमान छूती थी। उन्हें फिल्म में लेना एक महंगा सौदा माना जाता था। लेकिन 60s और 70s का दशक हमारे हिंदी सिनेमा का गोल्डन टाइम माना जाता है, और इसी दशक में साधना जी सुपरस्टार रहीं। एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और उनकी काफ़ी डिमांड रहा करती थी। आपको बता दें कि सितंबर में इनकी बर्थडे आती है। इनके फादर ने इनका नाम अपनी पसंदीदा हीरोइन के नाम पर रखा। एक डांसर थी, बंगाली डांसर थी, जिनका नाम था साधना बोस, आई थिंक, और वो इनके फादर की बहुत ही फेवरेट डांसर थी, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम साधना रखूँगा, और इसीलिए उनका नाम साधना रखा गया। और इनके जो ताया जी हैं, या कहूँ इनके पिता के जो बड़े भाई थे, वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स निभाया करते थे, और उनको देखकर हमेशा साधना जी को लगता था कि मैं भी फिल्मों में काम करूँगी। उन्होंने अपने फादर से कहा कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है, तो उनके फादर ने कहा कि थोड़ी ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, तैयार हो इसके लिए? साधना जी ने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। और बस फिर क्या था, मौका आसानी से मिल गया। फिल्मों में मौका पाने के लिए इन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी किसी इंसान को सर्वाइव करने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन साधना जी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, हर फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। और ऐसे ही उनके अभिनय से जुड़े हुए कुछ किस्से मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल एक गाना और सुनवा देती हूँ। बट उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये वन पाउंड आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. और इसके अलावा आप अगर जून से पहले आप अपना पैसा भारत भिजवाना चाहते हैं, तो आपको मिल सकता है मौका 75 पाउंड्स का वाउचर हर दिन जीतने का, जब आप 1000 पाउंड से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर एक गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: Leica Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो गया है, और आज ग्रुप बी में कतर और स्विट्जरलैंड की टीमें भिड़ने वाली हैं, और ब्राज़ील और मोरक्को की टीम्स भिड़ेंगी ग्रुप सी में। और मैच का हाल क्या होगा आप हमारे यहाँ से सुनते रहेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस हमारे जो इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं रैक लॉ, उनसे ज़रूर ले सकते हैं अगर आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Leica Gold.

0: लता जी की आवाज में ये गाना लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। गिरीश जी का कहना है कि ये गाना हर किसी के दिल के करीब है और आपने गिरीश जी बिल्कुल सही कहा है। इवन साधना जी के गाने हैं ही ऐसे कि मतलब सुनकर सही में मज़ा ही आ जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये फिल्म आई थी तो ये फिल्म और ये गाना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, लेकिन देखिए आज ये फिल्म क्लासिक मानी जाती है और आज इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाती हूँ आपको।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो दरअसल हुआ क्या, राज खोसला ने इस फिल्म को बनाया था। 1964 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म का नाम था वो कौन थी। राज खोसला को जो लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही सख्त किस्म के इंसान थे और उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। तो ऐसा ही हो रहा था जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक सीन के दौरान साधना जी को सफ़ेद कपड़े पहनकर एक रहस्यमयी मुस्कान देनी थी। साधना जी ने बहुत अच्छा शॉट दिया लेकिन राज खोसला का वो पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में साधना से कहा, तुमने ये क्या किया, मुझे चेहरे पर और मिस्ट्री चाहिए और रहस्य चाहिए। साधना जी ने बार बार उस सीन को किया लेकिन राज खोसला बार बार गुस्सा किए जा रहे थे। साधना जी को भी गुस्सा आ गया लेकिन उन्होंने गुस्सा दिखाया नहीं, वो घबराई भी नहीं और बड़ी ही शांति से राज खोसला की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राज जी अगर मैं इससे ज्यादा मिस्ट्री चेहरे पर लाऊंगी तो फिर आप जो फिल्म के अंत में सस्पेंस खोलना चाहते हैं ना, वो अभी खुल जाएगा और दर्शक अभी सब समझ जाएंगे। साधना की बात सुनकर राज जी यानी कि राज खोसला थोड़े हैरान रह गए लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि साधना सही कह रही हैं। दरअसल उनका अंदाज बिल्कुल सही था और बस क्या करते, सबके सामने जब साधना ने उनसे ये बात किया तो उन्होंने तुरंत कह दिया, ओके ठीक है, शॉट ओके है। और इसके बाद से राज खोसला साधना के अभिनय और उनकी समझ के बहुत बड़े फैन हो गए और इसीलिए देख लिए उन्होंने वो कौन थी के बाद उनकी जो एक और मिस्ट्री फिल्म आई थी मेरा साया और अनीता, दोनों में उन्होंने साधना जी को ही साइन किया।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: आशा जी की आवाज में रवि के म्यूजिक पर सेल्स साधना जी की सुपर हिट फिल्म एक फूल दो माली से लिया था ये गाना।
1: दिस इज ऋषि शर्मा।
0: और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैंस हैं तो तैयार हो जाइए क्रेजी फॉर किशोर के लिए। एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट होने वाली है जिसमें जॉय, इंद्रानी, संजय विद हीनल एंड 515 बैंड परफॉर्म करने वाले हैं और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल हैं एट eventbrite.co.uk पर या फिर उन्हें कॉल कीजिए ऑन 0208-514-5400 पर। इस प्रोग्राम के इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं लाइका गोल्ड रेडियो।
2: मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और जिसका टाइटल है अथ्रो बॉलीवुड रिवाइंड यानी कि अथ्रो बैक ऑफ 2000s और इसे होस्ट किया है अनुज राडिया ने। लाइका पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल और स्पॉटिफाई पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है
1: लाइका गोल्ड।
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट ट्रेवल hubworld.com।
4: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
5: This is huge.
4: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
5: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
4: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
5: Doors open at 10 AM sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
4: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
4: Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5-gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
8: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
9: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
9: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
9: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
9: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
12: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
11: Get a Royal Chai.

0: 5 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply। 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208951011।
1: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे।
2: अंकल तमे पहला थी आवाज छो।
3: आवा एटले केवा?
1: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स जिंदगी वंस मोर।
3: मारो बाप बनवानी कोशिश करे तू बुद्धि बेची आवे छे तू? अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे के जिंदगी खुद तने आवी न पूछे।
1: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
3: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर।
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
5: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: लता जी की आवाज में आप सभी का फेवरेट गीत गीता मेरा नाम फिल्म से सुनवाया, जिसमें साधना थी और आज हम साधना शिव दासानी को ही याद कर रहे हैं। लेकिन आप सबने सुना ही होगा कि आखिरी के दिनों में साधना जी ने मीडिया से और अपने फैंस से कुछ दूरी बना ली थी। जानते हैं उसका क्या कारण था? दरअसल साधना जी अपने लुक को लेकर बहुत सजग थी, लेकिन 1970 के दशक के शुरुआत में उन्हें थायराइड की गंभीर बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी आंखों में थोड़ी परेशानी आने लगी और उससे उनके लुक पर भी असर पड़ा। साधना नहीं चाहती थी कि उनके फैंस उन्हें एक ढलती हुई या एक बीमार अभिनेत्री के रूप में याद रखें। वो चाहती थी कि दुनिया हमेशा उन्हें उनके उसी खूबसूरत ग्लैमरस और साधना कट वाले चेहरे को याद रखे, और इसीलिए अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ फिल्मों में लीड रोल करना बंद कर दिया और खुद को लाइमलाइट से बिल्कुल दूर कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में मीडिया को इंटरव्यू देना और अपनी तस्वीरें खिंचवाना भी बंद कर दिया। और इसीलिए तो देखिए, साधना जी के जो जब वो फिल्में छोड़ चुकी थी, उस दौरान की किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है, कुछ हिक्का दुक्का तस्वीरों को छोड़कर। आज हमने यादें में साधना जी को याद किया है। एक और बहुत ही सुंदर सा गीत बजाने वाली हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 1 पाउंड आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £101.17 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Selling your car can be super simple if you choose WeBuyAnyCar instead of a confusing part exchange. Because with WeBuyAnyCar, you'll have cash in the bank for more bargaining power on your next car. If only they could make getting to that countryside wedding simpler.
4: Make a U-turn. Make a U-turn.
3: Oh no. WeBuyAnyCar. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.
5: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 आवर लाइन। The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me or you.
13: Southall Travel, at all protected.
14: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
15: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
16: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
17: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
18: हमने है इश्क मस्ताना।
16: मैं वापस आऊँगा। A film by Imtiaz Ali.
17: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
16: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas now.
19: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.

0: लता जी की आवाज में ब्यूटीफुल गाना, साधना जी की फिल्म अनीता से लिया था ये गाना, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक। और बस आज हमने यादें में साधना जी को याद किया। इंतशाफ कहती हैं, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब आप साधना जी को लाएंगी, तो चलिए आज साधना जी आ गई, सुनवाती हूँ।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold, Greater London.
0: आज की यादें का आखिरी गाना।

0: किशोर दा और लता जी की आवाजों में था ये गाना। और लीजिए दो बैक टू बैक गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। और इस आवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे साथी सुन रहे हैं और गिरीश जी जो भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं कहते हैं, आर डी बर्मन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ये गाना ऋतु मेरे नाम कर दीजिए। चलिए मैंने आपको ये गाना दिया। एंड विजय जी कहते हैं, यादें में आज रफी साहब के गीत सुनकर बहुत मजा आया, थैंक यू साथ देने के लिए। एस एस बोगल जी आपका भी स्वागत है। मानू जी, करसन पिंडोरिया, रानी जी, नंदा प्रवीण, स्वीटी कालरा, आनंद तोमर, इंतशा, फरीदा जी, शरफूड आंटी जी, योगेंद्र जैन एंड ऑफ कोर्स हमारी संध्या भावसर, जैस्मीन, सपना एंड परेश व्यास, दिव्या जी, हेना, सुरेंद्र पटेल जो कि हमें जिम में सुन रहे हैं, स्वागत है आप सभी का इस शो में। ऑफ कोर्स जासू जी, मिसेस पे के चियांग, रागिनी, रोशनी, बहुत सारे नाम हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्स गेम की, क्योंकि इस आवर में हम थ्री वर्स गेम खेलते हैं। और ये क्या होता है आपको बता दूं कि बॉलीवुड के किसी भी एक गाने से उसकी जो शुरू की चार पांच लाइनें होती हैं उनसे मैं तीन वर्ड्स पिक करती हूं और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं वो पहला है सावन, दूसरा वर्ड है अगन, तीसरा वर्ड है बहार। कौन सा है ये गाना? 1972 की फिल्म है, आर डी बर्मन का म्यूजिक है और किशोर कुमार की आवाज़ है। सावन, अगन, बहार, 1972 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक और किशोर कुमार की आवाज़। कौन सा है ये गाना? अगर आपको पता चल गया है तो अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर ज़रा भिजवाना।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ वर्ड्स। सावन, अगन, बहार, 1972 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक, किशोर कुमार की आवाज। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.2 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। लेकिन अगर आप जून से पहले पहले आपको मौका मिल रहा है, SBI वाले आपको मौका दे रहे हैं 75 pounds का वाउचर जीतने का हर दिन जब आप मनी ट्रांसफर करते हैं ओवर 1000 pounds। और आपको 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक मिल सकता है व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Like a Gold 10:35 AM
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 और visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Travel Hub best. Sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
4: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
10: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
11: अमन है इश्क मस्ताना.
9: मैं वापस आऊँगा. A film by Imtiaz Ali.
10: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
9: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas now.
12: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
12: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु,
14: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
12: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र शीघ्र.
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
3: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
16: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
17: Shri Jagannatha Society, UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, Subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, Aarti, Sacred Rath Pulling aur Prasad ka Laab zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra-2026. Jai Shri Jagannath.
18: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
19: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
18: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
20: Experience the ultimate escape. 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
21: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
22: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation. Me.

0: यस किशोर कुमार का मस्ती भरा गाना शराबी फिल्म से सुन रहा है आपको। और आप सब जानते हैं कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है हम सभी के फेवरेट, मेरे फेवरेट किशोर कुमार और उनकी आवाज में ये गाना, और ऐसा सिर्फ किशोर दा ही कर सकते हैं। तो ये गीत हमने आपको सुनवाया और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने आज के थ्री वर्ड्स गेम को सही सही पहचाना है, और जिन्होंने सही पहचाना है उनके नाम मैं बताऊंगी, लेकिन पहले शुरू करूंगी आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। और पहला गाना आप सुनेंगे मुकेश जी की आवाज में।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: थी मुकेश जी की आवाज शम्मी कपूर पर, और ये कॉम्बिनेशन काफी रेयर है। विजय जी सही कहा, क्योंकि शम्मी कपूर के लिए ज्यादातर गाने रफी साहब ने गाए हैं। इनफैक्ट अगला जो गाना है इसी फिल्म से है, शम्मी कपूर पर पिक्चराइज है, लेकिन आवाज उसमें रफी साहब की, जिसे आप सुनेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बताती चलूं कि मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं, मैं सुबह से आपको सुन रहा हूं और गीतों को एंजॉय कर रहा हूं, तो स्वागत है आपका इस शो में। और उसके अलावा और भी बहुत सारे साथी जुड़े हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हमारे किन साथी हैं जिन्होंने सही सही जवाब दिया है। तो उनके नाम है दिनेश पोपट जी। क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया, छे आपने आज गाना सबसे पहले पहचाना और बिल्कुल सही पहचाना। तो दिनेश पोपट जी और आंसर इज राइट। शालिनी जी, विजय गुडूरी, अरुण टंडन, भरत गंगाराम, उल्लास, महेंद्र बजारिया, रजनीश एंड गुरशरण, स्वाति बेज वोटर से, कसन पिंडोरिया, दिव्या जी हैरो से, रानी सोहानी, दामिनी बेन, शमीम शफीक, जयश्री जी, संध्या भावसर, उषा कोड़ा, गिरीश जी, कुकी, तोशी जी, तोची जी और हमारी किरण जी हैरो से आप सभी ने गाने को सही सही पहचान लिया है। वो गाना मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल एक और ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स गीत आप सबके लिए।
1: रिची शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड। फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए अगला ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गीत सुनवाने से पहले आपको याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क तारिक हलाल के साथ मिल रहे हैं और आपके लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनकी नई ब्रांच खुलने वाली है रेनर्स लेन पर वेंसडे 17 जून को, और एड्रेस है 297 रेनर्स लेन, पिनर HA55EJ। फर्स्ट 100 कस्टमर्स को मौका मिल सकता है क्लेम करने का एक गोल्डन टिकट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये सब होगा, और अगर आप £1 स्पेंड करते हैं तो आप £50 वर्थ ऑफ फूड आइटम्स भी ले सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगी। तो याद रखिए, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक लाइका रेडियो नेटवर्क लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा। कहाँ से? तारिक हलाल की नई ब्रांच से, जो है रेनर्स लेन में नई खुल रही है।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
3: The hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

सिर्फ ब्लफ मास्टर फिल्म से लिया था और ये था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। आशिक जी आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू गीतों को पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सबके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और सुनवाते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना। लेकिन उस गाने को बजाने से पहले आपको

0: खूबसूरत गाना किशोर दा की आवाज में, और ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना। और ये गीत उन सभी के नाम पर जाता है जो राजेश खन्ना के फैंस है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो चलिए आपको बता दें कि आप जानते ही हैं कि आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, और हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी। आइए जानते हैं उनसे क्या अपडेट्स हैं। हेलो कमल जी।
3: गुड आफ्टरनून रितु जी, कैसे हो आप?
0: बढ़िया हूँ, आप बताइए क्या खबर है?
3: बहुत बस एक्साइटमेंट। देखो T20 वुमेन का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, कल तो बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड धूमधाम से स्टार्टिंग किया, और अच्छा गेम भी इंग्लैंड श्रीलंका, सो इंग्लैंड विन यस्टरडे। बट बहुत अच्छा एक्साइटमेंट अभी स्टार्ट हो रहा है कि आज बहुत चल रहा है आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड का मैच, वेयर स्कॉटलैंड ने अच्छी शानदार बैटिंग की, तो 161/5, एंड नाउ यू नो आयरलैंड इज चेसिंग 50/2 इन 9 ओवर्स। पर उससे जाती हुई और एक्साइटमेंट है, दिस आफ्टरनून वी गॉट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका प्लेइंग एंड वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड, तो ये अच्छे अच्छे गेम्स हो गए। बट कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन वॉचिंग एज वेल सम हाउ ऑन यू नो लाइक अ रेडियो एंड लाइक अ गॉड, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड सब बात कर रहे हैं एट द मोमेंट कल की बहुत बड़ी गेम इंडिया पाकिस्तान की, तो वो भी बहुत अच्छी बर्मिंघम में गेम होगी। सो द वर्ल्ड कप इज रियली टेकिंग वेल, बट ऑल द टीम्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल।
0: सो थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
4: ये है लाइका गोल्ड।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
5: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £101.17 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: तो लीजिए आज का मेरा साथ आपके साथ बस यहीं तक, अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार गोल्ड पे होंगे अनुराग, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी फजीला एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर नीरज आपका साथ देंगे। लेकिन हम आपसे कल फिर से मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
6: लाइका गोल्ड आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
7: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
6: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
7: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
6: दर्शन पण अने यूरोप पण,
7: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
6: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स,
7: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
8: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यो छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो।
9: હસબન્ડજી
8: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યની ફૂલ ગેરંટી ફ્રાઈડે 26 જૂન 27 પાટીદાર સમાજ વેમ્બલી પાર્કમાં રાતના 8 વાગે ટિકિટ બુકિંગ માટે વિઝિટ કરો eventbrite.co.uk કોલ કરો વિડિયોરામા અથવા કોલ કરો મિસ્ટર બી 07860280655 સખના રહેજો હસબન્ડજી
10: ગોલ્ડ બેંગલ લંડન ટીમ્સ અપ ફોર ધ આતિફ અસલમ કોન્સર્ટ ઇન એસોસિએશન વિથ લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક For you to win a 5-gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply. Attention meat lovers of Rainer's Lane.
11: This is huge.
10: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
11: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
10: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
11: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
10: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only one.
12: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
14: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
16: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश.

0: जानू मेरी जान शान फिल्म का ये गाना सुन रहे थे रफी साहब, किशोर दा और आशा ताई के साथ साथ उषा जी की आवाजों में, और कमाल की फिल्म, और बर्मन साहब यानी कि पंचम दाने आड़ी बर्मन साहब ने इस फिल्म के लिए दिया था कमाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों के लिए, जिसके लिए हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूँ। इससे पहले कि मैं वीकेंड वाली पाठशाला का शुभारंभ करूँ, आगे बढ़ूँ, बहुत बहुत शुक्रिया रितु शर्मा जी का जो इससे पहले थी हॉट सीट पर। और चलिए हम आपको बताते हैं फिल्म शान से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। 1980 में फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन रमेश शिप्पी के साथ कुछ मुद्दों के चलते धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने ये पहले फिल्म छोड़ी। कई सारे बदलाव हुए इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर, खास तौर पर जिनकी जगह पर शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी को लिया गया। विनोद खन्ना साहब उस दौर में ओशो के आश्रम जाने के कारण फिल्म से बाहर हो गए, उनका भी नाम इसमें था। जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा साहब को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और संजीव कुमार साहब को विलन का रोल करना था, लेकिन उससे पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और कुलभूषण खरबंदा ने शाकाल की भूमिका इस फिल्म में निभाई। कमाल के इस फिल्म के किरदार, डायलॉग और ख़ास तौर पर संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया है, और जिमी की तरह हम भी आपको बुला रहे हैं हमारी वीकेंड वाली पाठशाला में, शामिल हो जाइए। अगला गाना हम आपको सुनाते हैं लता जी और किशोर दा की आवाज़ में, बड़ा ही प्यारा गाना जो मुझे तो बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी बड़ा पसंद होगा। सुनते रहें गोल्डन राग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.20। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
2: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler.
5: To the right a bit, mate. Yep, back a bit more. Oh, no, too far.
4: We Buy Any Car, selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
12: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
11: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
12: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
11: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
13: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk. Saturday, 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
14: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
15: No more worries for me.
16: Southall Travel, at all protected.
17: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
18: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
19: One day to go. Tomorrow night, Atif Aslam live at the O2 on the 14th of June. Be there for the music, the memories and the magic. Tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, LIKA Radio.
20: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
21: LIKA Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play LIKA Gold. Aur online suno LIKAGold.com pe.
22: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhai, maine to pehle keh diya tha ki ye gana mera all time favorite hai. Lata ji aur Kishor Da ki awaaz mein do chor film ka gana sunne the. Adi Barman saab ne kya kamaal ka is film mein sangeet diya. Film mein nazar aaye the बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्म पाजी और तनुजा जी. धर्म पाजी की कितने मशहूर थे अपने लुक्स के लिए, इस बात की तस्दीक मैं आपको कराता हूं. वैसे कि अगर हम दिलीप कुमार साहब की बात करें तो ऐसा कोई एक्टर नहीं हिंदी सिनेमा में जिसने ट्रेजेडी किंग, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है ट्रेजेडी किंग, उनसे ट्रेजेडी के कुछ अंश या कहा जा सकते हैं पैतरे ना सीखे. लेकिन खुद दिलीप साहब ने, यूसुफ साहब ने जब धर्म पाजी को पहली बार देखा तो उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं अगले गाने के बाद.
0: On Rag with Golden Rag.
3: ये पहले

0: कहानी से पर्दा भी हटेगा। रफी साहब और आशा दाई की आवाज में सुन रहे थे आप एक फूल दो माली फिल्म का ये खूबसूरत गाना। और जैसे कि हमें आपको है बताना कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम जिक्र कर रहे थे बॉलीवुड के माचो मैन ही मैन धर्मपाजी के बारे में, जिनको पहली बार जब ट्रेजिडी किंग दिलीप साहब यूसुफ साहब ने देखा तो कहा, ए खुदा तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया, इतना हसीन और कमाल खूबसूरत सेहतमंद चेहरा खुदा ने खुद नूर अता किया हो। तो ये थे लफ्ज, ये थे अल्फाज यूसुफ साहब के धर्मपाजी को देखने के बाद। और यकीनन धर्मपाजी का क्रेज़ इस तरह का था कि उनको हर कोई फॉलो करना चाहता था और इसी वजह से जिम ओनर्स की कमाई भी बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी तरह पर्सनालिटी सबको चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, अगला गाना आपको सुनाते हैं किशोर दा की आवाज़ में थोड़े से अंतराल के बाद।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: I'm literally crying.
4: Same, but my bladder can't take these laughs. I may have to leave.
5: Wait, try one of my always discreet maximum protection pants. Total game changer when the floodgates open up.
4: Seriously?
5: It gives me complete peace of mind, even for my heaviest bladder leak surprises. Go try one on.
4: Fair play. And now I can stay until the last gag.
5: Try Always Discreet's new maximum protection pants for heavy bladder leaks.
6: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
7: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट travelhubworld.com।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
12: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
13: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
14: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
13: So where do we find something like that now?
14: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
15: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legend.

0: is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधु ऑलराइट छे।
5: મે છેલે બેક ટુ બેક 3 મૂવીઝ જોઈ લીધી।
4: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી। બધું ઓલરાઇટ છે,
5: બેતર કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઇટ થઈ જશે।
4: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન। ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ।
6: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે।
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस। विजिट startours.co.uk।

0: किशोर दा की आवाज में ऑल टाइम क्लासिक गाना डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का ये डार्लिंग गाना, और इसके बाद है वाले गाने के बाद हम बताएंगे आपको आज के खेल, आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। दिमागी बत्ती जलाने के लिए हो जाइए तैयार।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के थ्रू इंडियन करेंसी में आपको मिल रहा है 1 पाउंड के बदले 127.58 पाकिस्तानी रुपीस, 373.21 श्रीलंकन रुपीस, 449.4 बांग्लादेशी टका, 164.67 अफगानी 86.29 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.17 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Non-stop classics. Like a gold.

0: लता जी की आवाज में ऑल टाइम हिट गाना गाइड फिल्म का। वैसे गाइड फिल्म के सारे गाने अच्छे हैं और इसीलिए हमने ये गाना भी आपको सुनाया है। और ये गाना, ये प्यारा सा नगमा हम तक पहुंचाया है उल्लाह जी और विजय जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और पहला गाना हम तक पहुंचाया गया था फिल्म साजन से, तुमसे मिलने की तमन्ना है, क्योंकि आज का गोल्डन वर्ड तमन्ना जो है। और ये गाना हम तक आया था संध्या भावसर जी और मिठुल पटेल जी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो आपकी तमन्नाओं को हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब अगली तमन्ना किसके फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रही है, फिलहाल थोड़ा सा हिंट देते हैं। और ये आवाज़ होने वाली है रफ़ी साहब की, बेहद ही खूबसूरत। सुनते रहें तमन्नाओं के साथ इस प्रोग्राम को, वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.20। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probates, family law, personal injury and other legal requirements.
0: आज मैच होने वाले हैं जो कतर और स्विट्जरलैंड के बीच में, यूएसए और पोर्चुगीज के बीच में चल रहा है मैच। इसके अलावा ब्राजील और मोरक्को का भी आज एक मुकाबला।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है Leica Gold. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026, 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full boat cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956154846.
6: क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold.
10: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
11: This is huge.
10: Farik Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
11: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
10: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
11: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
10: Farik Halal, Rainer's Lane. There is only one.
12: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
13: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
12: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
13: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
12: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
14: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
15: अमन है इश्क मस्ताना।
10: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali.
14: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
10: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas now.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
17: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
16: High appreciation.
17: In Dubai.
18: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
19: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
18: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
19: गारंटेड
18: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
19: फोन 02085748410।
18: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
21: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
22: Atif Aslam live in the UK.
21: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
22: Book your tickets now at AXS.
21: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
22: Exclusive radio partner, Leica Radio.
23: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
24: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
25: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ravi saab ki awaaz mein yahi hai tamanna. Film ka naam Aapki Parchhaiyan. 1964 mein ye film aayi thi bhai aur ye gaana hum tak pahunchaya hai. Santosh ji, Shekhar ji aur Girish पंजवानी जी ने बहुत बहुत शुक्रिया. आप तीनों का ही बड़ा ही प्यारा गाना आपने हम तक पहुंचाया, अपनी तमन्नाओं को हमारे साथ शेयर किया. अगला गाना भी बड़े ही तमन्नाओं के पिटारे से निकल कर आ रहा है. आवाज है मुकेश साहब की.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: मुकेश साहब की आवाज में होली आई रे फिल्म का ये गाना सुन रहे थे। 1970 में ये फिल्म आई थी, लेकिन कमाल का इस फिल्म का ये गाना जो हम तक पहुंचाया था हर्षा लाड जी ने, भरत गंगाराम जी ने, निर्मल किरीट, दिनेश पोपट जी, टोची पनेशर जी और रोशनी जी के अलावा महेंद्र पटेल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस गाने को हम तक पहुँचाने के लिए।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: तो भाई किशोर दा के फैंस के लिए खुशखबरी, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रानी, संजय विद हिनल एंड 515 बैंड। और ये इवेंट हो रहा है फ्राइडे को 19 जून, वेन्यू है प्रिंस रेजेंट होटल चिंगवेल एसेक्स। टिकट मौजूद हैं eventbrite.co.uk पर, और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0208514 5400। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो।
3: On Rag with Golden Rag.

0: रवि साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में सुमन जी ने अभी हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कहा। जी चाहता है फिल्म का गाना सुन रहे थे सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा और कमलनाथ जी ने इस गाने को हम तक पहुंचाया।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: इस समर को और भी ज्यादा यादगार बनाइए साउथ हॉल ट्रेवल के साथ। एक्सप्लोर कीजिए बीच, ब्रेक, सिटी स्केप्स एंड मोर। हॉलीडे डील्स इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल्स एंड अटोल प्रोटेक्शन, टेस्टेड फॉर ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल 0208574 8410।
1: Breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: Leica Extra Podcast ka update hosted by Anuj Radia aur is baar ka title hai Bollywood Rewind, a throwback to 2000s. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आपको अवेलेबल है आपके लिए Spotify, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर।
2: लाइका गोल्ड
4: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour, so no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
7: Was it floor 2 or 3? I swear I parked here. Where is it?
6: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.

0: जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 pounds.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Hi, hello, public demand? पत्नी प्रीमियर लीग એટલે કે PPL yes from 3rd July till 12th of July wow and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows yaad rakhjo
1: पत्नी प्रीमियर लीग shows at Risley Alberton East and South London Low Room Leicester for more information call Deepa on 0794756194
6: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड

0: 01437-388-3100 at all protected.
1: Minar Jewelers, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627।
2: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
3: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
4: Dosti ki koi value nahi hai na tujhe.
5: Utne achhe dost bhi nahi hai.
3: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
6: Maa, dulhan ke liye makeup.
3: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
8: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica गोल्ड रेडियो Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर।
7: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: सौरभ और शांति जी के अलावा शेखर जी लास्ट में एंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिलने जा रहे हैं 127.6। पाकिस्तानी रुपीस की अगर बात करें तो 373.21, श्रीलंकन रुपीस 449.4, बांग्लादेशी टका 164.67 एंड 1 यूएस डॉलर 1.34।
1: Like a radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.17 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio

0: एसपी वाला सुब्रमण्यम साहब और उनके साथ लता जी की आवाज मैंने प्यार किया फिल्म का गाना सुने थे। और अब इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। कायदे प्लस कानून जल्दी से समझाते हैं आपको। तीन ऑप्शंस देंगे जिन्हें आपको जिनमें से आपको एक को पसंद करना है, ए बी एंड सी। जो ऑप्शन सबसे ज्यादा हमें रिसीव होगा, जो कि वोट के तौर पर रिसीव होगा, वो ऑप्शन बनेगा आज का गोल्डन राग और वही गाना हम आपको सुनाएंगे। तो अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें जैसे ही हम आपको बताएं आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है आज के गोल्डन राग का, मुझको अपने गले लगा ले ओ मेरे हमराही, फिल्म का नाम है हमराही। ऑप्शन बी है सच है ये कोई इल्जाम नहीं है, फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते। ऑप्शन सी है दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात, फिल्म का नाम है कोहिनूर। तीन ऑप्शन हमने आपको बताए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन ए है मुझको अपने गले लगा ले फ्रॉम द फिल्म हमराही। ऑप्शन बी है सच है ये कोई इल्जाम नहीं है फ्रॉम द फिल्म अगर तुम ना होते। एंड ऑप्शन सी दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात, फिल्म का नाम है कोहिनूर। अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। और रही बात वुमेन्स क्रिकेट T20 की, तो उसका अपडेट भी हम कराएंगे और हम अपने खास करस्पॉन्डेंट से भी आपकी बात कराएंगे इस मैच की अपडेट को लेकर, इस वर्ल्ड कप के अपडेट को लेकर, जिनका नाम है कमल प्रभाकर जी। बहुत जल्दी हम उनसे भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन आप मत भटकिए अपने लक्ष्य से, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। अगला गाना हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक सबके चहेते किशोर दा की आवाज में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.20 पैसे। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर करें।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: कतर और स्विट्जरलैंड के बीच में मैच आज 8 बजे, कल होगा मुकाबला हैती और स्कॉटलैंड के बीच में।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk.
4: ये है
5: लाइका गोल्ड।
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 now apta bonded mantra holidays what's your travel mantra the voice that touches every soul star express presents hariharan's soul india
8: live in london experience an unforgettable evening with the legendary hariharan
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
11: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
5: at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
11: Kajal's Couture, Southall, style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
15: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
16: हमन है इश्क मस्ताना.
14: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
15: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
14: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Mayor Vapa Saunga in cinemas now.
17: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
18: No more worries for me.
19: Southall Travel, at all protected.
20: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
21: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
22: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
21: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-876-72142.
23: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
24: 25? Seriously?
23: Sounds like Ojo time.
24: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
23: Sorry about the wait. How can I help?
24: You can help me celebrate. I won.
25: Feel the fun. Play Ojo.
17: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
26: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
27: Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक किशोरदा की आवाज में अनुरोध फिल्म का प्यारा सा नगमा, प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। और अभी आपको एक और आवाज हम सुनाएंगे जो हमें देंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का अपडेट और आने वाले अहम मुकाबलों के बारे में भी जानकारी। एक बार फिर से लेकिन आपके लिए हम रिपीट करने जा रहे हैं आज के गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शंस, जिनमें से एक आपको चुनना है, उसे वोट की तरह कास्ट करना है और जिस गाने को लेकर सबसे ज्यादा वोट हमें रिसीव होंगे वो गाना बनेगा हमेशा की तरह आज का भी गोल्डन रॉक। ऑप्शन ए है मुझको अपने गले लगा ले, फिल्म का नाम है हमराही। ऑप्शन बी है सच है ये कोई इल्जाम नहीं है, फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते। ऑप्शन सी है दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात, फिल्म का नाम है कोहिनूर। अपने अपने वोट कास्ट करते रहे।
1: ये है लाइका गोल्ड, आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/.
0: तो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त कमल प्रभाकर जी, जिनका हम इंतजार कर रहे थे ICC Women's World Cup T20 का। तो कमल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइका गोल्ड पर। क्या है अपडेट बताना चाहेंगे
4: जी? गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक?
0: सब ठीक ठाक है जी।
4: ग्रेट ग्रेट। तो बस आज ही तो बहुत अच्छा गेम चल रहा है। सुबह से स्कॉटलैंड ने कंफर्टेबली विन कर लिया। टुडे दे बीट आयरलैंड 161 for 5 स्कॉटलैंड एंड 121 for आयरलैंड। सो स्कॉटलैंड जीत गया, बट एक्साइटिंग गेम चल रही है अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की। 112 for 4 इन 13 ओवर्स ऑस्ट्रेलिया, तो साउथ अफ्रीका विल चेस लेटर, बट बहुत अच्छी गेम है। वेरी डिफिकल्ट टू से कौन जीतेगा। और तीसरी गेम चल रही है वेस्ट इंडीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये एक्साइटमेंट है, तो बहुत बहुत एक्साइटिंग गेम्स चल रही है। Women's World Cup is really on the strength to strength.
0: बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन इन सबसे बड़ा मुकाबला जो जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कल होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए।
4: जी सर, कल को तो बहुत बड़ा मैच है फॉर एवरीबडी। कितने लोग तो कहते हैं ये तो फाइनल होता है। सो इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज अ प्रीटी गुड साइड एज वेल, एंड इंडिया इज बीन अ प्रीटी गुड साइड, ऑल्दो दे हैव लॉस्ट couple of games, but I think it's going to be a fantastic game. Atmosphere will be good. I will be at the ground, so I'll give you the updates and give you the excitement from there. It's going to be an amazing, amazing game. Or weather will be बहुत ही अच्छा है।
0: तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला कल होने वाला है, तो क्या एज होगा इंडिया के पास और क्या होगा पाकिस्तान के पास इस मुकाबले को लेकर?
4: देखो, एज ये है कि इंडिया की जो टीम है ऑलराउंड, ऑल्दो दे आर लास्ट वर्ल्ड कप जीते हैं एज यू नो, तो उसके हाई दे आर क्वाइट हाई, तो यू नो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड आई थिंक दे विल बी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। एंड पाकिस्तान इज रीबिल्डिंग, दे गॉट अ यंग टीम, और इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। इट विल बी अ ग्रेट fight, but I think India may have a little edge because of the same team and the same players at the moment. They are a good unit.
0: बिल्कुल,
4: पाकिस्तान इज नॉट फार ऑफ। हाँ जी,
0: एग्जैक्टली। बहुत सभी लोग एक्साइटेड इस मुकाबले के लिए, और हम कल जब आपसे मुखातिब होंगे, बात कर रहे होंगे, तो ये मुकाबला उस वक्त जारी होगा। तो तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा, इजाजत, और कल होगी आपसे फिर से गुफ्तगू। थैंक यू सो मच कमल प्रभाकर जी। तो ये थे कमल जी, जिन्होंने हमें अपडेट दिया, ताज़ा अपडेट दिया। कल के मुकाबले का भी अपडेट हम आपको इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। सुनते रहें गोल्डन राग।
2: दिस अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय TW Pays। विजिट TWPays.com/Leica फॉर अ चांस टू विन अ फ्री कार्ड टर्मिनल। T's and C's apply।
3: एंड RoboThink, दिस समर गिव योर चाइल्ड अ हेड स्टार्ट इन AI, रोबोटिक्स एंड कोडिंग। प्लेसेस आर लिमिटेड। सेव 20% ऑन फुल वीक समर कैंप बुकिंग्स विद कोड LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. On Rug with Golden Rug.

0: शकील बनायू के पेन से लिखे गए गाने के बोल नौशाद साहब के संगीत से सजा और रफी साहब लता जी के बारे में क्या कहा जाए, सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। कोहिनूर फिल्म का गाना बनाया आपने आज का गोल्डन राग। जल्दी से लेते हैं नाम, निर्मल, क्रीट, विजय जी, अनीता जी, संतोष जी, हसुमती जी, अयूब चौहान जी, मिसेस इकबाल बेगम, अर्जुन, विनी, शहनाज, कंचन, गौरी, सोहबत खान। एक लिस्ट और मैं पढ़ने जा रहा हूँ भाई नाम, क्योंकि टाई हो गया है मामला आज का, कौन सा है चलिए खुद ही समझ जाएंगे। मितुल पटेल जी, दिनेश पोपट जी, रानी सुनाहे, नीता जोशी, फरीदा गुलाम अली जी, उल्लास जी, हरीश, महेंद्र पटेल, संध्या भावसर, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा और निर्मला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी, लेकिन टाई हो गया है मामला, इसलिए किसी का दिल आज टूटने वाला नहीं। ब्रेक के बाद अगला गाना हमराई फिल्म से और हम अब आपसे मुलाकात कर पाएंगे कल, तब तक ले टेक केयर।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Selling your van can be super simple if you choose We Buy Any Van. They're on average 11 minutes away, so you can get it all sorted in under an hour. If only they could make keeping your van clean simpler. And spotless.
3: Oh, for crying out loud.
2: We Buy Any Van, selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanyvan.com.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: Shri Jagannatha Society, UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laabh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
11: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ
14: info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
15: टीचर्स ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबो थिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर 7,500 pounds. पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड लाइका 10. विजिट book.robothink.co.uk/laika.
16: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
15: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
16: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
18: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
19: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
17: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
18: Thanks. Playtime's over. Mmm. Lovely.
20: Feel the fun. Play Ojo.
21: 18 plus, gamble aware.
22: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
23: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: भी तस्वीर दिल में लगाने से पहले पूछ तो लेना था, उन्होंने अलाउ भी किया या नहीं किया। एनीवे, आपकी अपनी सरिता सवरवाल आपकी सेवा में हाजिर है आज के प्रोग्राम के साथ। होप यू आर वेल, जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय करते रहें और मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते रहें। गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता आपके लिए, और अगर आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतर जाएँ तो आप मुझे इस बात का एहसास दिला सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ये गाना आपने पहली दफ़ा कब सुना था और ये किस फिल्म का गीत है, अगर आपने पहचान लिया हो ये फिल्म कब देखी थी। बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं हर गीत के साथ, हर फिल्म के साथ, तो अगर आपकी भी कोई याद जुड़ी हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म लाट साहब। ये लाट साहब पहली दफ़ा नहीं आई थी फिल्म, पहले भी बन चुकी है, और पुरानी लाट साहब का भी गीत मैं ज़रूर आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगी। ये गीत जो चुना था मैंने 1992 की फिल्म थी, जिसे सुनील अग्निहोत्री ने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था, और इसमें थे जैकी श्रॉफ एंड नीलम इन द लीड रोल, और इस फिल्म का संगीत अन्नू मलिक का था, और ये फिल्म 12th जून यानी कल इन 1992 में ये रिलीज हुई थी। 12th of June 1992 में ये फिल्म रिलीज हुई। संगीत भी अच्छा था, अन्नू मलिक का कंपोज किया हुआ गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा, चुराया तूने दिल मेरा वो वाला गाना। और इसमें एक और गीत था वो भी काफ़ी फेमस हुआ था, हिरनी जैसी आंखों वाली, कुमार सानू ने गाया था, एंड दे दो मुझे कुमार सानू की आवाज़ में गाया हुआ वो गीत भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। दूसरा गीत मैंने सच में बताऊं तो फिल्म का नाम भी पहले नहीं इतना गौर से सुना हुआ। हरमेश मल्होत्रा ने इस फिल्म को बनाया था, अन्नू मलिक ने इसको कंपोज किया था इसके गीतों को, और इस फिल्म में काम किया था शत्रुघ्न सिन्हा ने, और साथ में थी लीड में हेमा मालिनी। किस किस ने ये फिल्म देखी हुई है, अगर हाथ खड़े करते यानी कि मुझे मैसेज भेज दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये फिल्म देखी हुई है और आपको पसंद आई। और ये फिल्म जो थी ये रिलीज़ हुई थी 25th of January 1985 में। सो मिले जुले गीत हैं, लेकिन इन दोनों गीतों में एक वर्ड बार बार सुनने को मिला, कौन सा वर्ड था वो बताना चाहें तो जल्दी से मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइक रेडियो नेटवर्क के ज़रिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, चाहे जिस भी जगह बैठे हैं, जौन सी भी सिटी में सुन रहे हैं, जिस भी सिटी में सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है, और अगर पहुँच रही है तो मुझे ज़रूर अपने होने का एहसास दिलाइएगा। और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत गीत है, लेकिन उससे पहले और भी बहुत से काम है, जैसे कि ये
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 15 paisas today. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: राइट भाई, फीफा वर्ल्ड कप हो रहे हैं और इस वक्त अभी मैच शुरू नहीं हुआ है। ग्रुप बी का मैच होगा रात 8 बजे कतर एंड स्विट्जरलैंड के बीच में, एंड ग्रुप सी का ब्राज़ील एंड मोरक्को के बीच में, एंड ये होगा हमारे यूके टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और ग्रुप डी का मैच हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स एंड पैराग्वे के बीच में, एंड 4-1 से यूनाइटेड स्टेट्स जीते। And don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Ruck Law, if you mention Laika. So, is baat ka bhi dhyan rakhiyega.
1: This update was sponsored by Ruck Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: तुझे क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
2: शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड,
8: the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
9: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
14: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
13: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
14: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
13: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
15: ખાખરા ક્રંચ, ભાખરી મંચ, ચિક્કી સ્વીટ, પાપડ બીટ, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
16: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
15: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
17: 1 day to go. Tomorrow night, Atif Aslam live at the O2 on the 14th of June. Be there for the music, the memories and the magic. Tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, Laika Radio.
18: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
19: Uncle, tame pehla thi aavaj chho.
20: Aava itle keva.
21: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
20: Maro baap banvani koshish karat tu. બુદ્ધિ વેચી આવ્યો છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
21: આ ફાધર્સ ડે, ફીલ ધી ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
20: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
22: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
23: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
24: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
23: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
24: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
23: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
25: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
26: Feel good track.
0: brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फिल्म का नाम था आमने सामने, 1967 में आई थी ये फिल्म, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस खूबसूरत से गीत को गाया। वो मेरे साथ ही जो बराबर मुझे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। और आपने बिल्कुल पहचान लिया है कि आज के गीतों में क्या कौन सा वर्ड है जो बार बार आ रहा है। मनु जी, निर्मल एंड किरत जी, संध्या भाव सर, संतोष इन हैरो, हंसा वोरा जी, नलिनी जी, सहर जी, उल्लास इन टोरंटो, अर्जुन जी, हर्षा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोबत खान, आप भी सुन रही हैं, हना, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, एंड महिंद्र पटेल इन क्रॉयडन, विजय गुजरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हसुमती हसू, थैंक यू। मिस शेख, आपका पीछे रहती हैं, आपका भी मुझे मैसेज मिल गया, थैंक यू। और ये गीत आप तक पहुँचाया था
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और ये गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म दिल ही तो है से, 1963 की फिल्म थी, सुमन कल्याणपुर की खूबसूरत आवाज़ जिन्हें हमने हाल ही में खो दिया है, एंड साथ में हैं स्वर्गीय मुकेश जी। इन्जॉय द सॉन्ग, आई एम श्योर यू विल गोइंग टू मर्मर दिस सॉन्ग। इस गीत के साथ साथ ज़रूर आप गुनगुनाएंगे।

0: अकेले। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
1: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और बहुत सारे मेरे साथियों ने मैसेजेस एकदम भेजे कि उन्हें ये गीत बहुत पसंद आया। थैंक यू लाइक अ रेडियो नेटवर्क टीम आप विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17th June, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन, पिनर HA55EJ। द फर्स्ट 100 कस्टमर्स विल हैव द चांस टू claim a golden ticket on a first come first served basis. Spend £1 only. Ji haan, spend £1 and receive £50 worth of food items. Terms and conditions apply. Like a radio network will also be broadcasting live from there from 10 a.m. until 1 p.m. So be there.
2: Like a
3: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: अभी आज तो चोरी की बातें कर रही है, सब गीतों में एक ही शब्द आ रहा है, चुरा लिया, चोरी किया। और ये गीत कैसे मैं भूल सकती थी। दिस इज द हाईलाइट, यादों की बारात, 1973 में आई थी ये फिल्म, और फिल्म का ये गाना तो सुपर डुपर हिट हुआ था। आपको याद है मृदु, आपको याद है शहनाज, आपको नहीं, विमल राय जी आपको तो याद होगा, एंड दिनेश पोपट जी आपको भी।

0: ऐसी भी क्या जल्दी है, कल दिल दे देंगे, इसमें क्या है। आशा भोसले एंड किशोर दा की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत हमने चुना था फ्रॉम द फिल्म शरीफ बदमाश। और इस दौरान भी बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं, प्रज्ञा जी, विमल रायन जी आप भी पहुँच चुके हैं, शौकत हुसैन थैंक यू, सहर आपका भी, नलिनी, संतोष फ्रॉम हैरो, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.60, Pakistani rupee 373.16, Sri Lankan rupee 449.43, Bangladeshi taka 164.64, Afghan Afghanis 86.26 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold का रेट है 101 pounds and 17 pence per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Chawal ho best, sab kare test, Disha Rice ka hai zamana, Disha Basmati Rice.
0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
6: This June, the FIH Hockey Pro League brings one of sport's greatest rivalries to London.
7: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
6: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
7: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
5: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड।
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: 0208574-8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5-gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
11: Maharaja Tours la rahe hai Captivating China 2026. Shanghai, Beijing, Xi'an or Chengdu ka unforgettable safar. Great Wall, Terracotta Warriors, high-speed trains or adorable pandas. Flights, hotels, Indian khana or guided tours, sab included. From £3,299 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956 154 846.
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
13: मैं छेने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई लीधी।
12: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विथ वीरज गेलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
13: बेतर कलाक बाद पाछो आवी जस ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
12: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल।
14: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
15: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
16: 25? Seriously?
15: Sounds like Ojo time.
16: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
15: Sorry about the wait. How can I help?
16: You can help me celebrate. I won!
17: Feel the fun. Play Ojo.
18: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gamble aware. T's and C's apply.
19: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, एक गीत था फ्रॉम द फिल्म प्रेम बंधन और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म, कौन सी फिल्म थी याद कीजिए, सरिता खुद भूल रही है होगी प्यार की जीत। एंड दोनों ही गीत बड़े ज़बरदस्त थे, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किए। इंतशाब आपने लिखा है एब्सोल्युटली लविंग योर प्लेलिस्ट, थैंक यू सो मच हरीश ग्रुटा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से साथ देते रहे। अर्चन जी थैंक यू, एंड प्रज्ञा थैंक्स आपका भी। अब प्रोग्राम के बाकी, इस सावर के बाकी के गीत मैंने एक ऐसे राइटर, ऐसे लिरिसिस्ट के चुने हैं जिन्होंने बहुत से देश प्रेम के गीत भी लिखे, लेकिन उनके फिल्मी गाने भी काफ़ी मशहूर हुए। नाम इनका प्रेम धवन जी। प्रेम धवन जी को आज हम याद कर रहे हैं, आज उनकी जन्म तिथि है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 13 जून 1923 में उनका जन्म हुआ था, तो उनके कुछ गीत मैं प्रोग्राम में शामिल कर रही हूँ। अगर आपकी कोई पसंद है प्रेम धवन जी का कोई लिखा हुआ कोई गीत या कंपोज किया कोई गीत आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भाई, अगर इनके ज़रिए पैसे आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे अप टू 127 rupees and 15 paise। सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। Terms and conditions apply.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Right, Group B का मैच होने वाला है कतार एंड स्विट्जरलैंड के बीच में और ये रात को 8 बजे शुरू होगा। एंड ग्रुप सी का मैच है ब्राजील एंड मोरक्को के बीच एंड इज गोइंग टू स्टार्ट एट 11 PM टुनाइट। और ग्रुप डी का मैच हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स एंड पैराग्वे के बीच में एंड स्कोर वॉज 4-1। सो आप हमारे साथ देते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 minutes free legal advice with our sponsor Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics.
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
5: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
6: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
5: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
7: दुल्हन के लिए मेकअप।
5: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Hi, hello, kem chho, hun chu Kirti Dawiana, aaj shu thayo, arara, public demand, Hariti aavi rahi chu, London maro navu natak laine, Patni Premier League, etle ke PPL, yes! from 3rd July till 12th of July. Wow! And this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo!
7: Patni Premier League. Shows at Trisleep, Alberton, East and South London, Blue Room, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
12: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
11: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
13: Gold Band London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5 gram gold coin, if you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
14: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
15: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
14: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
15: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
14: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
15: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
14: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
15: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
16: Chawal ho best, sab kare test, Disha Rice ka hai zamana, Disha Basmati Rice.
17: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
18: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
19: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
20: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
21: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
22: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: एक फूल दो माली, इस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को और प्रेम धवन जी को हमने याद किया। लेजेंडरी प्रेम धवन वॉज अ लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर एंड अ वेरी गुड डांसर एंड एक्टर हु इज best known for his iconic songs like ae watan tujhko meri kasam, mera rang de basanti chola, agar bewafa tujhko pehchan jaate, teri duniya se hoke majboor chala, आ लग जा गले दिल रुबा, अजब तेरी कारीगरी, ऐसे बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं। उन्हीं में से ये गीत मैंने चुना था, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया।
1: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और प्रेम धवन जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन इन 1923 इन अम्बाला हरियाणा। और कैसे ये फिल्मों में आए बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वक्त कितनी तेज़ी के साथ दौड़ता है। सबसे पहले तो ये बता दूँगी कि किशोर कुमार फैंस के लिए एक खुशखबरी है, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर जो हैं, जो लोग बहुत किशोर जी की आवाज़ को पसंद करते हैं उनके लिए अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय, इंद्रानी, संजय and Hinal and 515 band. It takes place on Friday 19th June at the Prince Regent Hotel Chigwell, Essex. May tickets available at eventbrite.co.uk or call 0208 514 5400. Exclusive radio partner hai Laika Radio, Laika Gold Radio.
1: Sarita Sabawal, the biggest classics on Laika Gold.
0: एक और बड़ा ही शानदार सा गीत है, आ लग जा गले दिलरुबा, 10 लाख का ये गीत और 10 लाख के और गीत भी बहुत खूबसूरत है, इन्हीं के लिखे।

0: ऐसे मीठे मीठे गीतों के बीच में हमें अगर क्रिकेट अपडेट भी मिलती रहे तो कैसा रहेगा। कमल जी हैं मेरे साथ और आइए उनसे सुनते हैं क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में।
1: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: Kamal ji, welcome.
3: गुड आफ्टरनून।
0: कौन से मैदान में आप कौन से मैदान में हैं? साउथहैम्पटन में हैं या ओल्ड ट्रैफर्ड में, कहाँ पर हैं?
3: अभी तो साउथहैम्पटन में हैं, पर अर्ली ऑन जो गेम था आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में ओल्ड ट्रैफर्ड।
0: ओके,
3: व्हाट ए गेम सरिता जी। ऑस्ट्रेलिया स्कोर 172 फॉर 8 इन 20 ओवर्स एंड साउथ अफ्रीका इज चेसिंग, दे आर 104 फॉर 8 4 ओवर्स टू गो। सो ये तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन कम्फर्टेबली।
0: जी जी।
3: और सुबह जो मैच हुआ था स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से,
0: जी जी,
3: वो स्कॉटलैंड इजी से जीत गए। और बड़ा मैच आज और हो रहा है, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड, वो 6:30 स्टार्ट होगा, तो उसका पता लगेगा। बट माहौल बहुत ही अच्छा है, बिकॉज द वर्ल्ड क्रिकेट ऑफ T20, इट्स अमेजिंग फॉर दिस वुमेन क्रिकेट का। ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल ऑडियंस, बहुत अच्छे सपोर्टर्स।
0: और कल का तो बहुत इंतजार रहेगा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है।
3: सरिता जी, दैट इज द अल्टीमेट मैसिव गेम इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। इंडिया पाकिस्तान के सभी मैचेस अच्छे होते हैं, तो ये तो अभी शो करेगा दोनों से। यू नो बोथ हैज गुड टीम, इंडिया हैज गॉट अ स्टेडी टीम, पाकिस्तान हैज जस्ट मेड अ न्यू टीम, यंग टीम कमिंग अप फॉरवर्ड।
0: गुड, गुड लक टू बोथ ऑफ देम। कमल जी, थैंक यू सो मच, वी विल बी टॉकिंग टू यू लेटर अगेन। थैंक यू,
3: थैंक यू,
0: बाय बाय। ये थे कमल प्रभाकर जी।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
4: Leica Gold. Leica Gold.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: Right, आपको बता दें कि एपिसोड 20 इज आउट नाउ एंड टाइटल है बॉलीवुड रीवाइंड, अ थ्रोबैक टू 2000s, होस्टेड बाय अनुज राडिया। एंड वाज दिस डेकेड a perfect mix of stars, songs and romance? Did the era redefine Indian cinema for NRIs? ये सब बातें उसमें डिस्कस होंगी। एंड Leica Extra पॉडकास्ट अगर आपके पास नहीं है तो इट्स अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
6: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
8: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
9: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away, so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.
10: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
11: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24।
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
16: सो your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
17: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
18: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
16: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
17: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
19: Feel the fun. Play Ojo.
18: 18 plus, gamble aware.
20: Brands that use radio are 49% more likely

सुमन कल्याणपुर जी की यंग आवाज में आपने ये गीत सुना फ्रॉम द फिल्म गीत। इस गीत को लिखा था प्रेम धवन जी ने और आज हमने इस आवर में प्रेम धवन जी के कुछ गीत शामिल किए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए।

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और एक अरसे के बाद इस गीत को मेरे प्रोग्राम में जगह मिली। मुझे उम्मीद है कि आपने इस गीत को उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना कि मैंने किया। एंड अगर आपने ये गाना पहले सुना और बहुत पसंद किया और सोच रहे थे कि कभी प्ले नहीं हुआ, तो आज प्ले हो गया। फिल्म का नाम था इंसान, और इंसान 1985 में आई थी ये फिल्म, और बहुत खूबसूरत गीत है जो मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। एंड इस फिल्म में किसने काम किया था, डू यू नो? वेल, 1st of January 1985 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। एंड आर्टिस्ट कौन कौन थी, अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अमिता जी, आपका मैसेज भी मिल गया। महेंद्र बरजारिया जी, आपका भी। एंड किसी ने मुझे लिखा था, डोमिनिक रिपब्लिक में हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। अब सरिता भुलक्कड़ है ना, थोड़ी भूल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल। मिसेज शुक्ला, आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम, इन्जॉय कर रही हैं। जितने भी मैसेजेस हैं जो मेरे सामने एक आदत है तो मैं उनके नाम लेती हूँ, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं आपको इग्नोर करती हूँ, बल्कि मैं सभी को रिटर्न में वापस ज़रूर जवाब देती हूँ। तो अगर मेरा जवाब नहीं मिले तो मुझे शिकायत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आप आज पैसे करवाना चाहते हैं ट्रांसफ़र, तो योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 127 rupees and 15 paisas। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Well, Group B का मैच हो रहा है आज कतर एंड स्विट्जरलैंड के बीच, रात 8 बजे शुरू होगा। एंड ब्राजील एंड मोरक्को के बीच में मैच हो रहा है आज ग्रुप सी का, एंड दैट विल स्टार्ट एट 11 PM। एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 minutes फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मैंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: At Boots, we know how great it is getting the best of both worlds. And with Boots brands, you can have it all.
5: Really?
4: Yep. Like skincare that's gentle on your skin and your pocket.
5: Nice.
4: Wellness that gives you more zen and less spend.
5: Love that.
6: And sun care without the scorching prices.
4: That was my line. Discover thousands of expertly formulated products with Boots brands. Quality you trust. Prices you love. Subject availability in selected stores and online.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
7: Leica Gold.
8: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler.
9: To the right a bit, mate. Yep, back. Back a bit. Bit more. Bit more. Oh, no, too far.
8: We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
10: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026, 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956 154 846. the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
3: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna rejo husband ji Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk, call karo Videorama athwa call karo Mr. B07860-280655. Sakhna rejo, husband ji.
11: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 hour line.
12: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future ready skills. Laika listeners get 10% off full week bookings with code LIKA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Laika.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट किशोरदा की आवाज़ में आपने ये गीत सुना और उनके साथ ही भी थे बहुत से, और बहुत प्यारा गीत था। और चुनना किशोरदा के गाए हुए गीतों में से एक गीत चुनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपकी कोई चॉइस हो तो मुझे कल के प्रोग्राम के लिए बता सकते हैं। और आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और आप सभी का थैंक्स करते हुए जो बड़े प्यार से मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं हर गीत के बाद, मुझे एहसास दिलाते हैं कि ये गाना भी बहुत अच्छा था, ये गाना भी हमें बहुत पसंद आया। तो जो भी गीत आपको पसंद आए उसे अपने ही नाम समझिएगा। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा दें और डेरी वैली वालों की तरफ से गीत आप सब तक पहुंच रहा है। आफ्टर दिस,
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन, द लाइक अ ग्रुप, फील गुड ट्रैक, ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग, डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
0: भाई ये वाला गाना मैं प्ले करना चाहती थी लास्ट आवर में लेकिन वक्त नहीं था। और ये गीत भी प्रेम धवन जी ने ही लिखा है। उम्मीद करती हूँ इस गीत को आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। वैसे ये गीत मेरे प्रोग्राम में बहुत कम बजा है पर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तो इस गीत के साथ साथ आप भी गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। आइए शुरू हो जाइए।

0: और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय प्रेम धवन जी, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, और मैंने ये गीत चुना. कुछ ही गीत आपने लास्ट आवर में भी सुने, और नीरज की आवाज़ आप सुनते हैं एक्चुअली लाइका रेडियो पर, और उनके आवाज़ में बहुत दम है, गानों की चॉइस भी बहुत अच्छी है. और कहने लगे कि अभी स्टूडियो में आए और कह रहे नीरज की सरिता जी ये गाना मेरे लिए बजाया है. मैंने कहा यस यस, आपके नाम नीरज, दिस इज़ फॉर यू. ओह यू ट्विंकलिंग, थैंक यू सो मच. और उम्मीद करती हूँ सारे के सारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं. आज 13 जून को 1923 में इनका जन्म हुआ था, प्रेम धवन जी का, और 7 मई 2001 में वो दुनिया को छोड़ कर गए. लेकिन उनका संगीत, उनके गीत, कोरियोग्राफी जिन फिल्मों में की, जिन फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की, तो आप सभी को याद होगा. पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया था इन 1970 एंड राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इन 1971. तो ये गीत था डेरी वैली वालों की तरफ से आपके नाम.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Laika Gold. और लाइका गोल्ड पर लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मैं आप सब तक एक सूचना पहुंचाना चाहती हूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क टीम अप विद तारिका लाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17th जून, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन, पिनर HA55EJ. And the first 100 customers will have the chance to claim a golden ticket on a first-come, first-served basis. Spend £1 and receive £50 worth of food items. Terms and conditions apply. Leica Radio Network will also be broadcasting live from there from 10 a.m. until 1 p.m. So, is offer ka fayda uthaiye na, jaldi se pahunch jaiye. Agar aap kaam par nahi jaate, to zarur wahan pahunchiyega. And also, the much-awaited FIH Hockey Pro League matches between India and Pakistan take place in London on 23rd and 26th June. They take place at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre. Get your tickets from englandhockey.co.uk and supported by Leica Radio Network.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: Another song by Rafi Saab, Dur Ki Awaaz hai film ka naam, 1964 mein bani thi ye film.

0: वेल, चाहे तो आप भी मदद कर सकते हैं। इनका दिल खो गया है, कहीं आपके पाँव के तले तो नहीं है? राइट, ओके। रजिंदर सिंह कालरा जी, आप भी सुनिए। स्वीटी कालरा जी, आप भी, आपने एक गाने की रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाई है। प्रेम धवन जी का लिखा हुआ गीत, ओपी नैयर का संगीत, और आपने कहा राजकुमारी जी ने गाया वो गीत, वो 1952 की शायद फिल्म है आसमा। सो आई एम रियली सॉरी, मेरे बाद विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आ रहा है, तो उसमें ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं कह सकूँ सैंडी जी को कि प्लीज़ वो गाना शामिल कर दें।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, make this summer memorable with the Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that includes flights, hotel and atoll protection, and trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit Southall Travel or call

0: hospitality partner, Ragasan.
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

देह तेरे पंख मगर उड़ के दिखा दे, जो सामने आए उसे ठोकर से मिटा दे। आह के संसार में तू

0: Vintage Gold, every weekend with Sandy Shah. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So your pound's going to get you 127.85 Indian rupees, 371.67 Pakistani rupees, 446.75 Sri Lankan rupees, 164.43 Bangladeshi taka and 83.74 Afghan.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is trading at £95.18 per kilo.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: अब हम सुनेंगे आवाज उमा देवी की. नौशाद का संगीत होगा नेचुरली और फिल्म का नाम है अनोखी अदा फ्रॉम 1948. एंड आफ्टर द मैसेजेस, अ सॉन्ग वी डोंट हियर वेरी ऑफ्टन बट इट इज ट्रूली वंडरफुली फील गुड सॉन्ग. इट रियली इज. हेमंत कुमार की आवाज है. फिल्म का नाम है बादशाह फ्रॉम 1954. शंकर जयकिशन का संगीत है एंड द फिल्म स्टार प्रदीप कुमार और माला सिन्हा. दिस इज विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह. थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. डू कीप देम कमिंग इन.
0: Vintage Gold on Leica Gold.

0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
5: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
6: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
7: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
8: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
7: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
9: Maa, dulhan ke liye makeup.
7: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
10: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Like a Gold. Reminisce those classics on Like a Gold.

0: लाइका गोल्ड। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 लाइन।
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
7: Atif Aslam live in the UK.
6: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
7: Book your tickets now at AXS.
6: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
7: Exclusive radio partner Leica Radio.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill. When I get back from India, roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
12: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है।
13: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
14: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे?
15: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
13: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
16: दुल्हन के लिए मेकअप।
13: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
17: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।